0: इंजीनियरिंग शिक्षा को लागी विगत 26 वर्ष देखि समर्पित यस एक्मे इंजीनियरिंग कलेज में शैक्षिक सत्र 2083-84 का लागि स्नातक तह में बीई सिविल, बीई कंप्यूटर, बी आर्किटेक्चर र बीआईटी विषय में भर्ना खुल्यो।
1: संपर्क एक्मे इंजीनियरिंग कलेज वसुंधरा काठमाडौं।
0: फोन नंबर 0156709246 5670925।

चढ़दा भन्नु भो चिंता न माना, डोली चढ़दा भन्नु भो चिंता न माना, डोली चढ़दा भन्नु भो चिंता न माना। देउरानी र जेठानी मिली बस्छम घरमा।

0: जनता केवल 5 दशक देखी
1: रेडियो भेरी एफएम
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: काठ को फूल नजीक उत्तर पूर्व सटर सुर्खेत मोबाइल नंबर 97486375 98489546576
1: रेडियो भेरी एफएम 98.6 102.7 मेगाहर्ट्ज़।

0: जनता केवल 5 दशक देखी।
1: यही असोज 3 गते शनिवार का दिन सुपर पोली क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्रणाली सुर्खेत में एससीआरसी अस्पताल नेपालगंज में कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं निसंधानपन विशेषज्ञ डाक्टर मंजू विशेष शाह द्वारा सशुल्क प्रेमी जांच